kosam sini di lengang Garut. Deken sini karena kamu sini.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, अभी समय के समीपतानुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक। Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों की भोजन खिलाया, कुछ किया, समझते बड़ा पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा, उनको पता नहीं होता है किसका फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, तो खाने वाले को कितना फल होगा।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब कंबाइन सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइन फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

किस आदत में।

Gosh.

छोड़ना भी।

personas.

Crochet.

Chorsa.

Chao, chao.

उसके लिए बाप दादा फिशिंग।

छोड़ने चाहती है, लेकिन लेकिन मैं तो बहुत बातें जो भी

Psst.

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। Sit.

0: संकल्प करते उमंग उल्लास का गुण धारण करके करना ही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जाओ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, घर के पीछे नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Idiot.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: में बाप दादा बच्चे में ये परिवर्तन देखने जाते हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप के याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो, पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं होती है ना, थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ पापा ही कराने वाला है, हाँ पापा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैं बना, इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नहीं, हम बिजी है।

0: सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तभी विधेय बने। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Satan. Santo Strene Valley. Santo Strene Valley.

假如Chama.

money be petty.

叫。

そっとして。

कितने भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर Yeah.

Chan. And poker nekeliye. Apne istitut

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Christine.

Trust me.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Son.

ശ്രേഷ്ഠ പ്രലംബത ചമകകത Arsa.

Ganz.

Pensarva casanoko. Chamakarniki. Chabies.

चाबी का नंबर पता है।

Peace.

Chamito.

सभी किसानों को वृद्धि की विधि है, किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Gelati.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष शक्तियां आप में है तो पास इसको इमर्ज रखना। सांस शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी, ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय और स्वयं

Peace.

Jesse.

So

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन समान

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति, अभी ज्यादा चाहिए सभी बच्चों का एक ही
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

essere.

soyez

trabajo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी साइंस के साधन

जमा का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए, ऐसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये याद उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया ये कोई कम

0: भी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना। तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था याद करो। अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा, अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
4: दूसरों को कराएंगे,
3: कराएंगे भी और अपना अनुभव सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
5: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

Grosse grêle. Auf gehen. Kuschieren.

記憶か。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, तो जैसे चल रहे जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, जीतो।

0: संभालते घर बार छोड़ के नहीं गए, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी? क्यों कि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखा चाहते हो तो ये पर्तक्य परमान है। इससे सभी आकर्षित होके सुते आएंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कि कई बच्चे लक्ष्य अपना

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आप आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
4: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब बाप की बनी है तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा I'm not

hediye. तो युद्ध किस में करते हो मेरा?

जब मेरा है नहीं अमानत, फिर अमानत में मेरा समझ के यूज करना, ये अमानत में ख्यानत नहीं है, माया से है मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं तो देव मन का, मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया? या मेरा है, बाप का है, पक्का है कि कहना है करना नहीं। कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला फायदा याद करो, करना बॉडी कॉन्शियस की हो, तो बाप की आज्ञा क्या?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी दूसरा पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाती है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति। बच्चों को इस समय बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

विश्व कल्याण गाड़ी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सीट पर सेट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: उल्ली में क्या करते? आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा? आप सभी का रंग है पाप के संग का रंग। तो सारा समय संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो इस स्थूल रंग बना दिया। Yes.

Pa' vendrete ca verdelin.

0: barbecue kebab. Sedap betul. Hey, betul suaru. Pernah nai berita suaru bapa betul tak? Tuh lagi. Fisik aja. क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम होली करना आते हैं जो हो चुका वो हो चुका। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी तो ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो पीता वो बीत गया होली। और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने भी क्या किया, योगाग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योगाग्नि से चलाया है ना, चलाया है कि अभी भी चला रहे हैं। चलाया है जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने संस्कार चलाया है, चल गए, वो हाथ उठाओ, चल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी तो राय मर्ज हो जाता है। लेकिन चलना माना चलना, चलने के बाद नाम निशानी नहीं रहता, मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया भी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलप चलाए, पसंद किए। चलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते। लेकिन भक्तों ने काफी सब किए, आप चलाते हो वो भी चलाते। फिर बनाते बिना चलाने के मनाते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रूहानियत नैनो से पार्थक्य होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनो से मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी जलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मानव वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई दे। अपने में भी शक्ति बढ़ने वाली है। और दूसरों को भी शक्ति देती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प, मनसा सेवा के निमित्त बनते। रूहानी बोल

0: जीवन का आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रोने बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता, रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते, जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेटी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए वरिटी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा Yeah. को समाप्त कर अपना राज लाए।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसलिए

0: छोटा, कोई भी वंचित नहीं रहे, किसी भी विधि से फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचो। वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

பார் லீக் பண்ண So

आप सबको ये तीन तत्व प्राप्त है ना, सबसे श्रेष्ठ क्योंकि बाप दादा के दिल तक पर कौन बैठता है।

0: 就是的。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

se così leghe, abbi cusro, ortus reco vi cusite, sadaco.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वो चाहते तो सभी है। बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता है। वेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दुनिया के हालतों को देखते हुए अब अपने
3: देख नहीं सकते।

मास्टर दादा बना के अपन ने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतने विश्व की आत्माएं जाना है।

Shut up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर

Suck.

रवासी चालू हो जाती है। वो रिजल्ट ज्यादा

0: और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी, तो कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर रामानुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Custom name, but best song.

conoce. Jacket, Magnin, Cartier, que amco, bachao, toa, bachane valeo, bachao, bachao, que ne valeo, ap, checaro, ar, चेक करके फिर क्या करूं? चेंज दिल शिकस्त नहीं चेंज जब बाप साथ है तो बाप को यूज यूज करो ना यूज कम करते हो सिर्फ कहते हो बाबा साथ है बाबा साथ यूज करो जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का या क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और पढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी निवारण

स्टॉक में

Summer.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो। क्यों क्या नहीं हो? मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा?
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा धन मन धन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिए, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है। बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे, तो बताओ जिसने दिल दिलाराम को दे दी वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा तो दिल लगी की बातें बोल चाल या दृष्टि से फिरती से दिल लगी तो नहीं करेंगे। थोड़ी दिल दी है, थोड़ी और से लगाने के लिए रख लिया है, दिल दे दिए। दिल नहीं लगाना, बाप की अमानत। दिलाराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती है। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी या कुमार भी, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा ये अटेंशन दिलाते। कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारी दिलाई ने बाप को दे दी तो दिल कैसे लगेंगे? शराबी अगर किसकी दृष्टि वृद्धि कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें आज ही है वाकई के सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, कुछ भी हो जाए जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितने भी मुश्किल आवे लेकिन फिर को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई आत्मा वचन दे, कभी

0: Sorry. एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा फिक्र विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shut up.

Ishq Deodora. Desisto.

चीजों को परिवर्तन करता।

So.

अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

you, fellow.

traversa. Bok is patosep.

Siroco. Don Bayajit. Sightseeing go.

0: साइटसीइंग देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी हो, आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सुन, आपके कर्तव्य को सुनकर और भी सीखे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जब मेहनत देवा मोहब्बत।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और का फल मिला, जमा नहीं होता, इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah. Parmatam. Touch it.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता, जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उनों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी जैसे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये पक्का हो गया, पक्का है ना? चलते फिरते क्या सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ स्पष्ट, क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sunday.

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। अगर मनन करो see

जो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

So

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बीमारी को मरा देती क्यों?

0: Itu kambing-kambing. Kisah Bima. What in here? Mano. Kamar pitarat. Meja di kot. Ek tak tarat. Ek. Kamar ke katarat.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की

紹介受け。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते सने संस्कार भी सने ही।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है। Baby।

un hogar. Tu esiste, ti vale co. E fecha. Oggi me acciste ti. Arc garbar queste ti me. Cut mi garbar me age. Al gel me age. इसीलिए देना नवी हो या तो सारो आपको क्या होने तो खेल बस इसे देखो घबराता नहीं हाय ये क्या हो गया संकल्प में भी नहीं है सब पूछते हैं नानवे में क्या होगा कुछ होगा नहीं होगा बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है खूब सफाई करो लंबा लंबा झाड़ू दिया है उसको सवा करो तो घबराते क्यों आपके ऑर्डर से वो सफाई करेंगे तो आप क्यों हलचल में आते हो आपने ही तो ऑर्डर दिया है चल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थित हो जाओ प्रकृति का खेल देखते चलो घबराना नहीं आप अलौकिक हो साधारण नहीं हो साधारण लोग हलचल में आएंगे घबराएंगे अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे लाइट हाउस लाइट फैलाएंगे इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा साकी सदा अपने कोई भी हाल चलो अपने बुद्धि को
radio fissata, Nick.

0: pipí. A tarde y banana. Sus carolegen. Satano que a dar par. Apre chivan con Ivano. Sainz que satan. Kabibi. Shoes नहीं कर सकेंगे इसलिए silence का साधन जहां भी होंगे जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएंगे लेकिन अपने पति की लाइन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सार फार मदद कार्ड। तो अभी क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वो कहे क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत ज्यादा है। विश्व के आत्माओं को संदेश देने का संकल्प को समाप्त

0: शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख अपने भाई बहनों को दे तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ये होमवर्क देते चाहता, ये तो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हरेक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। जयपुर शहर में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त। और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साथ नहीं आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Prese atención de la red. ¿Qué fue?

आवश्यक साधन सबके पास है।

0: Fish.
1: What?
0: Foundation.

Fishes.

0: ваших задан. Все скоро лихен титана.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Lakshmi y Madena. हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा के छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी, खुश दिमाग और खुश किस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो तो अभी भी अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Chill.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sigh.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उससे ज्यादा

Jesse.

Begin.

एक बार दिल से कहा।

0: Déjame en paz. Es al poco. Practicalmelo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरे तरफ योग

Venom.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सब

Jay, the

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने

0: Essa bi samé aika jo aapke samne aane se aapka divya swarup dekhne mein aave saakar sadharan swarup kahe mujhe jaise baap dada ke samne aate ho to baap dada ko jaisa samay us roop mein dekhte aise aap sabhi bhi aise dikhai
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Dumb.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस उसके वृद्ध कभी भी कृष्णा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती, मतलब का रैम नहीं सच्चा रैम, मतलब का रैम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर तो वो हुआ मतलब करें सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही दे अपमान वादी के किसी भी आकर्षण डायरेक्ट दाता से लो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ,
2: us।

起来。

संकल्प अपने दिल में करो, छोड़ना है अपने दिल में सोचो, लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक

beat.

Prost.

सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

दृढ़ संकल्प सामने लाना। और रोज अमृत वेले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सफलता

वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति असफलता की बात को भी सफल

0: ज्यादा सफलता स्वरूप हूँ। ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये सदा स्मृति में रख, तो जो भी कुछ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा किसानों के मालिक बच्चों के
2: Yes.

Sa

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

परिवर्तन का कार्य। नहीं करना है बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार। जन्म भी साथ है, और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में, हर एक बच्चा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना, साथ जन्म है, साथ रहते।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते, सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूँ, ये अपने स्वमान स्मृति में लाऊं तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता। सहज पुरुषार्थ मौज का पुरुषार्थ, सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब स्वार्थ का पुरुषार्थ, निस्वार्थ पुरुषार्थ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लक्ष्य

ました。

ese. Nuestro mahona. Coimos que.

विशेष पाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध

Sećan budi karat.

वजन गरम समा

अचानक और अचानक ही होना है। जैसे अपने दादी को देखा,

संतुष्ट करने में इसे संतुष्ट

Et c'est les mamans.

0: शरद का समय, बहुत थोड़ा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आजकल ब्रह्मात्माएं भी सैंपल देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है? रूप में कौन मूरत देखने चाहते? तो कर्म से विशेष सहयोग, गुरों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता। सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश

0: Con casa jo. Va, aquí ha anat moco. Con ta.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्ति

के बाद आती है, बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी करते हो।

Joe.

आपको मास्टर सर्वेक्षण।

0: they powerful. Swapan Dadiban. चल रहे हो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नस्तीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज कर लो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

fishes. Attention to apna yang aap apna program banao apna

0: बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मदक को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी। शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन बन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

switches.

Chup.

वर्णन भी कर रही है, सोच भी रही है।

钱。

Kiana.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सब

πένα. Απ' το Ιάτχαρτ.

they get.

शब्द भूलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये भूलना नहीं। मैं कौन बाबा?

娃娃都给我个故事，故事比巴多的爱而开阿不给我是个巴卡里的故事巴的What's up?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शावली

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को सेवा।

जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालिया है। सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलप फिरके का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका कहाँ स्थान है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। जानते हो ना, इसे नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से मिलते हो से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर स्थूल शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले, संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्तापन, अगर संस्कार

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: फिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सोचो ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ, बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं रखा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी का विशेष साथ

टेस्ट भी आते हैं, समाचार तो अच्छे हैं, संसार समाचार जैसे अच्छे लगते हैं, तो ब्राह्मण संसार समाचार।

दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सुनते तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाप की श्रीमत में बारह माध्यमिक क्यों की, जो कि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनते। सुना क्यों? और उसकी आदत डाली, मानो एक बार ही आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पल गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने, क्यों कि आपने सुना वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी।
웃었어.

non ti va mancare. Ho fatto me paura che te ne ammattere. Tu hai paura a te. Vai un mandalco carab. Tu c'è time waste. उसका एक कारण पर मत और दूसरा कारण पर एक से बात सुनी आठ दस को नहीं सुनावे ये नहीं होता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे बहुत नई बात हुई है यहाँ। आप आएंगे ना फिर सारा सुनेंगे परंतु हुआ है तो ये क्या हो गया पर चिंता समझो आपने चार को सुनाया एक तो सी

संकट

ये तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी हो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसा एक दो को सहयोगी बनाओ जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले, दाता बनकर सहयोग पाते नहीं। देखो सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप की मदद तो है लेकिन समय पर लेवे।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर दौरे की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला मन अलग चीज है। इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना। इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट वन नेगेटिव भारत चिंतन की संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं होता है क्यों? शराब भी अंश
4: वैसे नहीं आ सकते जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।